0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा ले, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बंटती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती, किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: All right, let's do that one more time. क्या बात है wonderful kawali तेरे वास्ते right here on Big 106.2.
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
0: क्या हाल चाल है 6:30 on this Friday की सुबह से 19th of June. The weekend is almost here. कुछ घंटे और काम पे आपको बिताने हैं. उसके बाद तो दो दिन ऑफ. आराम इत्मीनान. Are you आराम इत्मीनान kind of a person? या वीकेंड आते ही आपको थोड़ा सा टेंशन होने लगता है कि यार वीकेंड है. It's a bit of a performance pressure of sorts कि यार कुछ तो करना है वीकेंड पे, कुछ तो प्लान बनाना है, किसी ना किसी दोस्त को तो झांसे में लेना है, मुझे बोतल में उतारना है. ऐसा कुछ है क्या आपके पास कुछ फंडा, समथिंग दैट यू रेकमेंड दैट वी डू ओवर द वीकेंड? लेट मी नो. देयर इज अ फिल्म दैट यू बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू. कॉकटेल 2 इज कमिंग अप. इट्स गोना बी वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ द बिग ब्रेकफास्ट विद मी सिड, बिकॉज आफ्टर 9 AM, एज सून एज इट टर्न्स 9, आई विल हैव द वन द ओनली द गॉर्जियस कृति सैनन ऑन द शो. Talking about her experiences in Cocktail 2, the film that releases today, aaj 10 baje, a first day first show hai. From Dhurandhar the Revenge, main Wari Jawa coming up in just a while. This is Big 106.2, a part of the Funny Share Network.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Today's weather update. Sub-zero temperatures are recorded in Dubai. Reports say it's Sharaf DG's Sub-Zero Fiesta on refrigerators, ACs, appliances and more. Experts confirmed instant discounts of up to 1,000 dirhams. Get free gifts worth 500 dirhams, plus win exciting surprises.
4: Shop cool and save more with Sharaf DG. T&Cs apply.
5: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurance Market.ae.
1: Big 106.2.

0: feelings back.
1: ए बुड्ढे, ए बुड्ढे।
2: नमस्ते।
1: पहले आप आदर कीजिए, आप गुस्सा नहीं होंगे।
2: भला मैं क्यों गुस्सा होने लगा?

0: Bollywood. This summer, get ready for a big surprise that will make the heat worth it. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Coming soon. Only on Big 106.2. A part of Fun Asia's global media network.
1: Burger craving? Pizza craving? Why choose when you can have both? Introducing the new Cheddar Burger Pizza Collection from Papa John's. Dive into Double Cheddar Nashville, or the Juicy Chicken Burger, or the bold flavor-packed Beef Burger Pizzas. It's burgers and pizza, together like never before. Papa John's. Better ingredients, better pizza. Order now.
0: The Big Breakfast, brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding.
2: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
3: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
4: आज तो जैसा भी हो मौसम मूड बिल्कुल ऑसम. इट्स ऐसे नहीं बात करनी चाहिए मुझे. इट्स अ फ्राइडे की सुबह. दैट्स व्हाट आई वाज रेफरिंग टू. जस्ट अ फ्यू मोर आवर्स एट वर्क, उसके बाद वीकेंड. 33 डिग्रीज सेल्सियस राइट नाउ, ह्यूमिडिटी एट 58%, विंड्स ब्लोइंग एट 8 किलोमीटर्स पर आवर. नाइस एंड सनी स्टार्ट टू दिस फ्राइडे मॉर्निंग एज कैन बी एक्सपेक्टेड अराउंड दिस टाइम ऑफ द ईयर. हाइज ऑफ 38, लोज ऑफ 32 डिग्रीज सेल्सियस.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: चल क्या रहा है यार, मतलब क्या पसूरी मची हुई है? सबसे ज्यादा पसूरी, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट वन थिंग, दैट 15 का एज लिमिट फॉर सोशल मीडिया।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: UAE has moved to restrict social media access for children under 15 and mental health professionals ne kaha that bahut sari habit चेंजिंग चीजें हो रही हैं, बुरी बुरी आदतें पड़ रही हैं बच्चों की। दे अफेक्ट देयर स्लीप, स्टडीज, कॉन्फिडेंस, ओवरऑल वेल बीइंग, इट्स ऑल बीइंग एसोसिएटेड टू वन बुरी आदत एंड दैट इज सोशल मीडिया। एंड दैट इज व्हाई जून 18 को न्यू रेजोल्यूशन वाज इशूड टू बैन दोज अंडर द एज ऑफ 15 फ्रॉम क्रिएटिंग और यूजिंग पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स और एक्सेसिंग देयर फुल फीचर्स। सो पेरेंटल कंट्रोल अब सोशल मीडिया पे भी पड़ेगा। अगर आप एक पेरेंट हैं राइट नाउ, यू मस्ट बी फीलिंग वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। गिव मी अ कॉल, लेट मी नो। 800-1062 is the number for reactions. 800-1062 social media ban for children under 15, for it, against it. How are your children feeling? I can't even imagine. I'm going to play out a song from a time when I was a chota bacha. Here's Junoon with Sayoni. Show ka naam hai The Big Breakfast with me, Sid. Good morning.

0: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
1: Three hearts, one friendship, one unforgettable journey. Madhok Films and Love Films present Cocktail 2. Starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon, Rashmika Mandanna. Directed by Homi Adijania. Releasing on June 19th all across the GCC in a cinema near you. Distributed by Marudhar. Powered by Big 106.2.
2: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
3: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
4: फ्राइडे की सुबह वो टाइम होता है जब मुझे लगता है कि यार मेरा शो 7 बजे क्यों नहीं शुरू होता, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। इट्स वेरी लेजी स्टार्ट टू द डे राइट ऑन अ फ्राइडे मॉर्निंग। एवरी फ्राइडे ऐसा ही होता है, आज भी नो डिफरेंट। जस्ट द यूजुअल हॉटस्पॉट्स पे आपको ट्रैफिक मिलेगा 311 E11 हेडिंग साउथ बाउंड गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा, मैक्सिमम 5 मिनट की देर। एंड देन देयर इज अ बिट ऑफ कंजेशन बिल्डिंग अप एट बेरूत स्ट्रीट, स्टोरी एंड सैडली इंडस्ट्रियल एरिया 6 पर भी आपको ट्रैफिक मिलना शुरू होगा S112 पर। इन केस यू स्पॉट समथिंग गिव मी अ कॉल 800-1062 पर।
3: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Are you a gym body? किस तरह के वर्ड्स आ गए मार्केट में यार?
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Oh, gym body. I'm a gym boy. Oh my God. Yes. If you go to the gym, here's the latest research for you. अगर आप जाते हैं जिम में, if you're one of those people especially, जो कि you can't resist. इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ मैं, तो उसका कुछ फायदा, जो फायदा है वो मैं सोशल मीडिया पे डाले बिना दिन नहीं गुजरता. Then रिसर्चर्स ने इस बात पे भी रिसर्च कर लिया है, साइंटिस्ट के पास कोई काम धंधा नहीं. तो आंसर इज नो. एंड पीपल हु फ्रीक्वेंटली पोस्ट, दिस इज द लेटेस्ट रिसर्च, पीपल हु फ्रीक्वेंटली पोस्ट वर्कआउट अपडेट्स स्कोर सिग्निफिकेंटली हायर ऑन ट्रेट्स रिलेटेड टू नार्सिसिज्म एंड द नीड फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन. सो या सो जस्ट इन केस यू केयर अबाउट दीज साइंटिफिक रिसर्चेस, ये सेल्फियां डालना बंद करो. डोंट लिसन टू साइंटिस्ट. Don't listen to anything. Make sure whatever you want to do in the morning, this is that time of the day. Jo karna hai wo karo, jo gaana sunna hai mujhe batao, main play karunga. 800-1062 is the number to call. Here's Heer Aswani, Deep Rock on the vocals. This is The Big Breakfast with me, Sid.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: लगता है होम ग्राउंड एडवांटेज सिर्फ क्रिकेट में नहीं होता, फुटबॉल में भी होता है यार।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: Start the 10 minute on this Friday ki subah. It is in the middle of the FIFA World Cup that we are, and home team Canada beat Qatar 6-0 yesterday. Of course, since we're in the region, we're all supporting Qatar. But like I said, home ground advantage to Canada, 6-0, big result for them. And aaj in news just in, अभी मैच खत्म हुआ है मेक्सिको वर्सेस साउथ कोरिया. साउथ कोरिया ट्राइड वेरी वेरी हार्ड बट मेक्सिको बीट देम इवेंचुअली 1-0 एंड नाउ दे टॉपिंग देयर टेबल विद 2 विन्स आउट ऑफ 2 गेम्स. सो इंटरेस्टिंग टेबल है साउथ कोरिया. चेकिया ड्रू अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अर्लियर टुडे. सो आज के दिन व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट. आज यूएसए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. माय फ्रेंड किच इज डेफिनेटली गोइंग टू बी सपोर्टिंग द सॉकरूज एंड या इनकी एक ट्रेडिशनल राइवलरी है यूएसए ऑस्ट्रेलिया की. देखते हैं कि विच टीम एक्चुअली टर्न्स अप ऑन टॉप. लाइक आई सेड होम ग्राउंड एडवांटेज आज यूएसए को होगा. विल दे बी एबल टू कैपिटलाइज और विल द इनफॉर्म सॉकरूज Australia be able to kind of get one up on them. Very interesting. Aaj 11 baje game and then 2 a.m. yani raat ke 2 baje Scotland versus Morocco in the World Cup. It is all happening at FIFA. Jaan se guzarte hain, kai ton khana import karte hain, lekin FIFA jeet ke jaane ka irada rakhte hain. I'm talking about a particular Scandinavian team. They brought in tons of food just so that unki dietary habits break na ho. Which team am I talking about and how much food and kya khana aisa to kya khate hain ki inko import karna pada. Coming up in just a while. Keep it locked to the Big Breakfast with me, Sid.
1: Big 106.2.

0: big. Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Wow, your hair color looks stunning.
2: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
1: Yeah, right.
2: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
1: Really?
2: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
1: I'm buying it right now.
2: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural-looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color made in Italy.
3: अरे ओ सांबा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
4: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
3: अलराज कहाँ है अलराज?
4: मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
5: अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
3: चलो चले अलराज।
0: The Big Breakfast brought to you by Jetour UAE. Drive your future. Part of Elite Group Holding. The Big Chill.
6: All my favorite music in one spot.
0: Weekdays 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.
7: Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jetour T2.
8: Yeah, right. I wish.
7: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Al Furjan before 30th of June and boom, the Jetour T2 is yours.
8: And the apartments?
7: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
8: I'm going now.
7: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
9: साबित कर 25 मिनट डॉट ऑन द क्लॉक ऑन दिस फ्राइडे की सुबह. लेट्स टेक अ लुक सबसे पहले एट द यूजुअल सस्पेक्ट 311 E11 हेडिंग साउथ बाउंड गोइंग टुवर्ड्स दुबई फ्रॉम शारजा. इट्स अ फ्राइडे मॉर्निंग तो ट्रैफिक की भी बड़ी लेजी शुरुआत होती है. दिस इज आल्सो बेरूत स्ट्रीट ट्रैफिक कंजेशन इज बिल्डिंग अप एंड दिस इज राइट आउटसाइड मदीना मॉल स्पेशली हेडिंग साउथ बाउंड गोइंग टुवर्ड्स देरा फ्रॉम शारजा S112 पर यू विल फाइंड वेस्ट बाउंड ट्रैफिक राइट आउटसाइड यूनिवर्सिटी सिटी इन शारजा. ऑल्सो 44 का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है गोइंग टुवर्ड्स बिजनेस बे फ्रॉम बिजनेस बोल Business Bay from D3. In case you spot something unusual on the road, give me a call 800-1062 per.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: खिलाने पिलाने और जमीन भाई पसारे बोल रही थी कि हाउस मां कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के प्यार का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: बिग 106.2

0: is smooth flowing. चलते हैं दुबई शारजा की ओर. सबसे पहले DLC दुबई साउथ हेडिंग नॉर्थ एंड देन a bit of southbound traffic also on 311 you'll find there as soon as you cross Expo City. Up north heading south going towards Dubai from Sharjah 311 E11. दोनों आर्टरीज पर आपको मिलेगी कुछ 5-6 मिनट की देर, नथिंग मेजर. बेरूत स्ट्रीट पर भी मदीना मॉल के बाहर अ बिट ऑफ कंजेशन. देन देयर इज अ बिट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट बाउंड ट्रैफिक ऑन S112 शारजा इंडस्ट्रियल पर क्लोज टू यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा. देन साउथ बाउंड ट्रैफिक गोइंग टुवर्ड्स अलवीर ऑन 611 एज वेल.
1: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.

0: एंड जेन्युइन प्यार हम लोग करते हैं यूएई में विद एवरीथिंग टू डू विद स्पोर्ट एंड फिटनेस.
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.
0: Well, there should be a survey about this, right? Ke matlab, which is the country that gives most amount of importance per density of population to like sports things, everything to do with fitness. I think UAE would be number one. Could be not happy with any other ranking than number one. Because jitna pyar hum log karte hain yahan par sports se, fitness se, duniya mein ek aur kahin pe bhi nahi hota. Iska example ek aur hame mila. In case you're wondering ki yaar ab Jitex to shift ho gaya Expo City mein, to DWTC mein kya hoga? The answer is, there's going to be a massive zero dirham ka workout space that is at Zabeel Halls. आप जानते हैं, एवरीवन नोज़ द फेमस जबील हॉल्स. इज नाउ अ फ्री मेगा जिम फॉर ऑल दुबई रेसिडेंट्स. वहां पर आप बिल्कुल फ्री, यू कैन गो एंड बीच द समर हीट, एक्सरसाइज इन फुल एसी फ्रॉम 8 AM टिल मिडनाइट. लेकिन ऑफकोर्स ये लिमिटेड टाइम ऑफर ही है, इट्स गोना बी टिल द 25th of August. सो गो एंड एंजॉय योर फिटनेस एट जबील हॉल्स एट DWTC.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, VIP सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही। 106.2

0: 106.2. The Beat of Bollywood.
1: It's game on with Big Ticket.
2: A guaranteed 25 million dirham prize.
1: 5 winners of 1 million dirhams each.
2: Plus weekly draws.
1: Buy now at bigticket.ae.
3: This is an 18 plus game. Play responsibly. TNCs apply.
4: You know what? Salary day obviously अच्छा दिन होता है, लेकिन काफी hectic भी. Cash निकालो, bills और expenses के लिए पैसे अलग रखो, फिर बाकी पैसे घर भेजने के लिए exchange center के चक्कर लगाओ.
5: सब कुछ इतने मुश्किल तरीके से क्यों कर रहे हो? E&Money यूज करो.
4: क्या सैलरी के लिए?
5: हाँ, अपनी सैलरी डायरेक्टली E&Money में रिसीव करो और ढेर सारे बेनिफिट्स पाओ.
4: जैसे क्या?
5: जैसे इजी लोकल और इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स, फ्री कार्ड, सब कुछ एक ही ऐप से.
4: वाओ, ये तो काफी यूजफुल लग रहा है.
5: बिल्कुल, E&Money के साथ आपकी सैलरी और भी ज्यादा काम करती है. इससे सैलरी डे काफी आसान हो जाता है. तो E&Money के साथ फिक्र छोड़ो. Terms and conditions apply.
6: Wow, your hair color looks stunning.
7: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
6: Yeah, right.
7: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
6: Really?
7: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
6: I'm buying it right now.
7: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
8: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
9: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
10: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अल रास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
11: गुड मॉर्निंग, 8:18 ऑन दिस फ्राइडे की सुबह 19th of June. 35 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी, ह्यूमिडिटी एट 41%, विंड्स ब्लोइंग एट 6 किलोमीटर पर आवर, हाइज ऑफ 38, लोज ऑफ 33 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ.
0: Al Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by insurancemarket.ae.

0: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: It is 8:25 on the clock, and it's the time that everybody waits for on the show. It's the feature that you love. It's that chance for you to get your hands on two open movie tickets. It's time to play the big Bollywood quiz. Aaj Bollywood actor ka ek birthday hai. Nahin, ek Bollywood actor ka birthday hai. Lekin Bollywood ka scene main aapko nahi sunane wala hoon. Because although he started his career in Bollywood, unki pehli 4-5 filmein flop hui, and then ek flop actor ka jo ek tag lag jata hai, which is like so difficult, must be right. And then he shed all of that when he made his entry on one of the, if not the most epic show ever on Indian television, right? And uske baad ek aur epic show unhone kiya. Is dusre wale epic show ka main ek dialogue aapko sunane wala hu, and you got to figure out ke ye jo lamba wala naam hai ye kaun se actor ka tha.
2: Pandit Gangadhar Vidyadhar Mayadhar Omkar Nath Shastri Gram Gudinda Post Trikholi Jila.
3: Are lamba ho jata hai, thoda shortcut kijiye.
2: Par ye to abhi chota hai, हम तो इतने में ही आजकल संतोष कर लेते हैं. वरना हमारा तो पहले नाम बहुत बड़ा था. हाँ, पहले दिन तो सिर्फ हमारा नाम ही नाम छपता था, न्यूज़ तो दूसरे दिन आती थी.
3: देखो तो
2: आप आज्ञा दे तो पहले वाला नाम सुना दें.
3: अरे नहीं नहीं नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है.
1: या इस एक्टर का नाम बताइए. इनका पंडित गंगाधर विद्याधर सो एंड सो फनाना ढिकाना, इतना लंबा नाम था. इट्स अ शो दैट एवरीबॉडी लव्ड. इस शो पे एक फिल्म भी बनने वाली थी, उसका क्या हो रहा है कोई आइडिया नहीं है. दिस गाइज गॉट अ लॉट ऑफ फ्लैक इन द रीसेंट पास्ट फॉर ऑल द गुड रीजंस, बिकॉज भाई हाँ, कॉस्ट्यूम में आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए. हु एम आई टॉकिंग अबाउट? कौन से बॉलीवुड एक्टर का आज बर्थडे? इफ यू नो द नेम, इफ यू फिगर्ड आउट दैट हु इज द रियल लाइफ गंगाधर विद्याधर शास्त्री, देन गिव मी अ कॉल 800-1062 पर. अगर आपको जवाब पता है, सही जवाब दीजिए एंड विन टू ओपन

0: SelfDrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2. The Big Breakfast with Sid on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: I've got Rupinder with me on the phone line. Rupinder, kya chal hai? Chak de phatte.
2: लेकिन
1: आप तो होटल इंडस्ट्री में है तो आपके लिए तो वीकेंड मस्ट बी अ वर्क डे राइट और नॉट
2: नहीं नहीं फॉर सेल्स एंड एडमिन इट्स ऑफ फॉर वीकेंड ओनली ऑपरेशंस दे आर वर्किंग ऑन वीकेंड
1: लेकिन हम देसियों की आदत है ना यार वी आर नेवर ऑफ सो आर यू वन ऑफ दोस पीपल हु एक्चुअली टेक अ कपल ऑफ डेज ऑफ स्विच ऑफ योर फोन्स कैन यू डू दैट इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री
2: नॉट रियली वी कांट रियली डू दैट बट या यू हैव टू बी अवेलेबल ऑन फोन बट मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज क्लाइंट्स आर ऑल्सो ऑफ ऑन वीकेंड सो वी डोंट हैव दैट मच वर्क
1: चलो सही है यार
2: आई एम अ पर्सन हु जस्ट स्विच ऑफ व्हेन आई गो होम आई स्विच ऑफ माय माइंड आई जस्ट व्हेन आई एम एट होम आई एम एट होम
1: अरे हाँ मतलब वी आर ऑल दैट पर्सन बट देन दैट वन अदर पर्सन दैट वी डोंट वांट टू बी व्हिच इज आवर बीओएसएस ही इज दैट पर्सन हु स्टैंड्स इन द वे ऑफ अस स्विचिंग ऑफ आवर फोन्स बट चलो आई होप दैट यू हैव अ वंडरफुल वीकेंड रुपिंदर एंड क्या आपको पता है कि गंगाधरी शक्तिमान शक्तिमान गंगाधर है अब बड़े होके पता नहीं ये क्या अनाप शनाप करते रहते हैं स्पेशली इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एंड जो बयान देते हैं आई मीन यू डोंट लाइक हिम ही इज काइंड ऑफ रुइनिंग आवर चाइल्डहुड राइट हु एम आई टॉकिंग अबाउट हु इज द एक्टर बिहाइंड शक्तिमान
2: He is मिस्टर मुकेश खन्ना
1: इज द करेक्ट आंसर आपने जीते दो ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज कांग्रेचुलेशंस एंड नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर फोन्स राइट इग्नोर योर बॉस एंड गो एंड वॉच मूवीज ऑल्सो जो भी आपको देखनी है जब भी जाकर देखना है आप जाकर देखिए ठीक है
2: थैंक यू सो मच
1: ये है रुपिंदर हमारी आज की विनर हैं एंड डोंट फॉरगेट रोज सुबह ये मौका टू फ्लेक्स योर बॉलीवुड मसल एंड विन दीज टू ओपन मूवी टिकट्स इन द बिग बॉलीवुड क्विज़

0: लंबर्गिनी तो कुछ भी नहीं है यार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के सामने।
1: द बिग ब्रेकफास्ट विद सेड ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन फुटबॉल गोल्ड एंड पिकल्स, लेट मी टेल यू। जब कोई टीम, जब कोई देश फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतता है तो बहुत खुश होता है, खुशियां मनाता है, लेकिन उसके बाद फीफा कहती है हो गया, अब वापस करो ट्रॉफी को, वापस करो। दे आर नेवर गिवन द ट्रॉफी टू टेक बैक टू देयर कंट्री विद देम। इट इज एक्चुअली अ आइडेंटिकल रेप्लिका विच इज पानी चढ़ा हुआ, गोल्ड प्लेटेड जो उनको मिलता है वो लेकर वापस जा सकते हैं। क्यों? बिकॉज डिड यू नो व्हाट द वैल्यू ऑफ द ट्रॉफी इज? इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल ट्रॉफी इन द होल वाइड वर्ल्ड। 18 कैरेट गोल्ड से ये ट्रॉफी बनाई जाती है। इट इज वैल्यूड एट $20 million, $20 million की वो ट्रॉफी है। एंड इट हैज बीन स्टोलन नॉट वंस बट ट्वाइस, दैट्स व्हाई दे आर सो स्ट्रिक्ट अबाउट इट। दो बार उसकी चोरी हो चुकी है। 1966 में जब वो चोरी हुई, इट वॉज रिकवर्ड बाय दिस डॉगी कॉल्ड पिकल्स। सो दैट्स द कनेक्शन बिटवीन पिकल्स एंड फीफा। एंड देन उसके बाद 1983 में जब दोबारा उसकी चोरी हुई, तब तो वो ट्रॉफी रिकवरी नहीं हुई आज तक। दैट इज व्हाई दे एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट इट। इट इज केप्ट इन अ सेफ इन ज्यूरिख इन स्विट्जरलैंड। एंड जब फीफा वर्ल्ड कप होता है तब ही वो निकलती है दौरे पर, उससे पहले यही उसका घर है, दिस सेफ इन ज्यूरिख। दैट्स हाउ यू नो केयरफुल दे आर आफ्टर एक नहीं बल्कि दो बार इसकी चोरी हुई। देयर सो मच ऑफ एक्शन हैपनिंग एट फीफा। ईच मोमेंट इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, आई एम टेलिंग यू। मतलब एंड स्पेशली द स्मॉलर टीम्स आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल दिस टाइम। टीम्स फ्रॉम अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, देन देयर इज केप वर्ड, ऑल दीज टीम्स आर रियली गिविंग द टफर द बिगर टीम्स रन फॉर देयर मनी, राइट? आज क्या होने वाला है? USA वर्सेज ऑस्ट्रेलिया इन रियली रियली गुड फॉर्म बोथ दोज टीम्स। क्या होम ग्राउंड एडवांटेज मिल पाएगा USA को, और विल द सॉकरूज गेट वन अप ऑन देम? एंड देन देयर इज मोरक्को वर्सेज स्कॉटलैंड ऑल्सो एट 2 AM टुमारो मॉर्निंग, या आज रात, जैसे भी आप टाइम को देखते हो। एंड देन देयर इज अ ब्राजील वर्सेज हेती, or do you call it हाइती, मैच ऑल्सो कमिंग अप। आर यू अ फुटबॉल फैन? आर यू गोना बी अप वॉचिंग द गेम दिस वीकेंड?
2: This is the Big Breakfast with me, Sid. Here's the title track of Hai Jawani To Ishq Hona Hai. Good morning.

0: order for just 50 dirhams on the Papa John's UAE app and enter the Papa Cash and Rewards raffle. You could win 50,000 dirhams cash every month, plus monthly iPhones. And that's not all. Everyone wins with free pizzas and sides guaranteed. Dine in, take away, or get it delivered. Just order through the UAE Papa John's app. Download, order for 50 dirhams. Enter the raffle. Everybody wins. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
2: क्या आप अपना कारोबार जल्दी और आसानी से स्टार्ट करना चाहते हैं? अजमान वेंचर्स फ्री जोन में आपका स्वागत है. सिर्फ 2 घंटे में अपना लाइसेंस हासिल करें, 48 आवर्स में एक वीजा और अपनी कंपनी स्टार्ट करें. सिर्फ 4,888 दिरहम में 100% डिजिटल. जितना आप चाहें आसान किश्तों में पे करें. आज ही 0680888888 पर कॉल करें या विजिट ancfz.ae. अजमान न्यू वेंचर्स फ्री जोन. अपना कारोबार, अपना फ्यूचर.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
5: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट.
6: मॉर्निंग 9:24 ऑन दिस फ्राइडे की सुबह. इट इज 35 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. Nice hot and sunny start to this Friday morning. Humidity at 41%, winds at 6 kilometers per hour, highs of 38 right now, lows of 33 degrees Celsius.
5: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2. Big 106.2. Song of the Hour, brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
3: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: The Big Mix. Weekdays, 10 a.m. to 2 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae. Listen to her every day.
4: Mugembo! Khush hua!
5: Kya karte saadab?
6: I work as a risk auditor.
5: Oh, risk auditor.
6: And, local group, yeah.
5: Kya hota hai ye? Risk auditor? Kiske risk audit karte aap? Logon ki zindagi ke? Mujhe nahi pata yaar. पूछ रही हूँ ना पहली बार आपसे कि होता क्या है, क्या रिस्क ऑडिट करते
6: हो? बेसिकली वी ऑब्जर्व द प्रोसेसेस, द एसओपीज, द प्रोसेस नोट्स, लाइक हाउ गुड दे आर, आर देयर एनी लूप होल्स
5: एंड इफ देयर आर एनी। नेक्स्ट टाइम आई गो ऑन अ डेट आई एम टेकिंग यू साद, यू बी माय रिस्क ऑडिटर प्लीज, सो दैट आई डोंट गेट इनटू एनी मोर रिस्क इन लाइफ। फिलहाल वी विल प्ले द 5 सेकंड रूल, आर यू रेडी?
6: यस आई एम रेडी।
5: ऑलराइट, क्विकली नेम 3 माधुरी दीक्षित की मूवीज।
6: बेटा, दिल,
5: yeah! अरे
6: आप कौन?
5: वेरी गुड, मुझे लगा शुरू तो ऐसे किया था एकदम। क्या हो गया आखिरी तक? 3 एडवाइस, इन फैक्ट इन 3 वर्ड्स जो आप देना चाहोगे फेलो हस्बैंड्स को।
6: कीप योर माउथ क्वाइट। आई सेड ऑलवेज लिसन टू योर वाइफ।
0: या कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
7: It's 9:36 on the clock on this Friday ki subah, 19th of June. Let's look at Alkhel Road. Sabse pehle there is about 4 se 5 minute ki delay that you'll face at the usual D3 going towards Business Bay. Halka bulka traffic also at D75, and this is going towards Dubai Frame heading east. Chalte hain north, 311 E11 heading south going towards Dubai from Sharjah. Both these arteries par aapko similar stoppage time milega, around 5 to 6 minutes ka.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
8: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामो सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
9: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
0: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग 106.2 फास्ट ट्रैक सॉन्ग ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
10: से वो

0: फ्रॉम पति पत्नी और वो दो, दैट इज रूप दी और रानी रंधावा। इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ फ्रॉम द बिग ब्रेकफास्ट, लेकिन जाते जाते कुछ खास करने वाला हूं मैं।
1: The Big Breakfast with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
0: सबसे पहले तो ये बताने वाला हूँ कि हमारे शो के कर्ता-धर्ता कौन हैं, एंड हेना स्पीडी इजी हेयर कलर मेड इन इटली कवर योर ग्रे हेयर इन जस्ट 5 मिनट्स ऑल थैंक्स टू देम। इट्स अमोनिया फ्री फॉर्मूला एनरिच्ड विद हेना एक्सट्रैक्ट एंड आर्गन ऑयल, गिव्स यू वाइब्रेंट नेचुरल लुकिंग कलर, वर्क्स ब्यूटिफुली इवन ऑन थिक हेयर, डिलीवरिंग इजी इवन एप्लीकेशन। द इजी कॉम्ब एप्लीकेटर मेक्स कलरिंग यू एज सिंपल एज कॉम्बिंग योर हेयर, गेट मैक्सिमम ग्रे कवरेज, वाइब्रेंट कलर एंड अ नेचुरल लुकिंग फिनिश विद हेना स्पीडी इजी हेयर कलर मेड इन इटली। मिलूंगा आपसे मंडे सुबह, एंजॉय योर वीकेंड। आप यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल्स इफ यू डोंट ऑलरेडी। क्या कर रहे हो यार, 106.2 बिग एफएम वहां पर जाइए, 106.2 बिग एफएम ऑन इंस्टा, दैट्स आवर हैंडल, यू फाइंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट आउट देयर, एंड आई एम सिड सेठ, SIDSETH। जाते जाते एन एब्सोल्यूट ट्रीट फॉर यू, जस्ट अबाउट लेस देन 10 मिनट्स अगो समथिंग रिलीज्ड राइट ऑन यूट्यूब, एंड दैट इज धमाल फोर से गाना कहर, गोइंग फ्रॉम वन गुरु रंधावा सॉन्ग टू द अदर, और इस में यू विल फाइंड वॉइसेज ऑफ अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी। सो ऑलराइट, हियर इट इज, कहर ब्रांड न्यू राइट हियर, यू हर्ड इट फर्स्ट ऑन बिग 106.2। आई विल सी यू ऑन मंडे, टिल देन बाय बाय।
2: रोल कैमरा एंड एक्शन।
3: अरे वो लोग को शूट कर रहे हैं,
4: हमारे बिना शूटिंग ऐसे कर रहे हैं।
5: ये तो अपना गाना, या कम ऑन, धमाल की शूटिंग हमारे बगैर।
6: अरे

खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस
1: ये मामो
0: सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बीट 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding. The Big Mix. Brought to you by InsuranceMarket.ae. For the best insurance deals in the UAE, call 800-ALFRED-247.
3: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
4: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
2: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
5: अरे यार, मालदीव से यहाँ आके ऐसे दिल ही नहीं कर रहा कि मैं यहाँ के वेदर की बात करूँ, बट आई हैव टू स्नैप आउट ऑफ इट। द वेदर राइट नाउ इज 34 डिग्री सेल्सियस, हाईज आज जाएंगे 37 तक, लोज विल ड्रॉप डाउन टू अबाउट 32, ह्यूमिडिटी फिलहाल है 48% पे।
2: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.
6: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
7: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
3: Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jador T2.
4: Yeah, right. I wish.
3: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Alforjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
4: And the apartments?
3: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
4: I'm going now.
3: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
5: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
6: आते ही यार ट्रैफिक पे नजर पड़ गई, मतलब क्यों छुट्टियां क्यों नहीं शुरू हो रही, लोग जा क्यों नहीं रहे हैं। नॉनदलेस लेट्स टेक अ क्विक लुक ऑन द रोड्स। E311 शेख मोहम्मद बिन जायद रोड लाइट ट्रैफिक आपको मिल जाएगा तो R4 के पास। उसके अलावा यू विल ऑल्सो फाइंड लाइट ट्रैफिक ऑन E44 रसल खोर रोड, दिस इज अराउंड द D3 जंक्शन। वहां पे कम से कम 5 से 6 मिनट का डिले हेडिंग टूवर्ड्स बिजनेस बे। उसके अलावा थोड़ा सा ट्रैफिक आपको मिल जाएगा फिर ऑन D89 एयरपोर्ट स्ट्रीट, वहां पे व्हीकल ब्रेक डाउन की वजह से आपको मिल सकता है मॉडरेट ट्रैफिक अबाउट 5 to 7 मिनट डिले, दिस इज अराउंड मराकेश स्ट्रीट। उसके अलावा ऊद मेहता के पास हेल्थ केयर सिटी के पास फिर ऑन D79 वहां पे लाइट ट्रैफिक 2 से 3 मिनट का डिले। एनी अदर अपडेट लेट अस नो 4305 पे।
5: selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2।
7: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
8: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
5: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: फिर और क्या चाहिए, मैं बोलती हूँ एक और छुट्टी चाहिए मुझे। छुट्टी में से वापस आई हूँ और मेरा मन ही नहीं कर रहा काम करने का, तो आई थिंक बस अनलिमिटेड छुट्टीज चाहिए। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन द मूवी ऑब्सेशन, बट यू नो हाउ दैट वन विश विलो ब्रिंग्स ऑल योर विशेस कम टू लाइफ एंड यू नो इट हैपन्स फॉर रियल। आई फील लाइक दैट इज व्हाट आई वांट टू विश, अनलिमिटेड लीव्स, बस इसी की दुआ मांगनी है मुझे। ऑन दैट नोट वी आर हेडिंग इनटू द सेकंड आवर ऑफ द शो, दिस इज द बिग मिक्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग, यू विद मी ज़ोरा।
1: Discover the freedom plan that suits you best. Freedom. Your choice, your rules. Visit eand.ae to learn more. T's and C's apply. Eand. Go for more.
2: Big 106.2.

0: The Big Mix with Zohra on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: हाँ जी, जोहरा के साथ राइट हियर ऑन द बिग मिक्स 11:16 हो चुके हैं. करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई वी शुड बी स्टार्टिंग वर्क लेट. ये डिबेट मैंने कितने लोगों के साथ किया है, बिकॉज जो लोग कहते हैं ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऑफ कोर्स श्योर, लेकिन आई फील विद द वर्ल्ड चेंजिंग पैटर्न्स आर आल्सो चेंजिंग एंड आई फील लाइक यू शुड बी एबल टू अडैप्ट टू दोस चेंजिंग पैटर्न्स एंड नॉट स्टिक टू एन ओल्ड टेल जो यू नो पुराने जमाने में लोग बोला करते थे. एज ऑफ नाउ आई फील लाइक वी नीड टू स्टार्ट आर डेज अ लिटिल लेट. ये मुझे लगता है, अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल फील कि नहीं, जितना जल्दी शुरू करो उतना अच्छा होता है. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस न्यू स्टडी इट शोज दैट गोइंग टू वर्क बिफोर 10 AM इज लिटरली टॉर्चर फॉर योर माइंड एंड बॉडी. जो मैं बोलती आई थी मजाक में, वो लिटरली एक स्टडी में प्रूव हुआ है. सो बेसिकली इट सजेस्ट दैट यू नो व्हेन यू स्टार्ट योर डे बिफोर टाइम और बिफोर योर बॉडी इज नेचुरली रेडी फॉर इट, तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू यू नो स्लीप डेप्रिवेशन. आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हो, यू नॉट एबल टू फोकस वेल एंड हायर स्ट्रेस लेवल्स इज वेल. सो बेसिकली व्हाट द साइंटिफिक रीजनिंग इज दैट योर बॉडी इट रन्स ऑन एन इंटरनल क्लॉक कॉल्ड द सर्केडियन रिदम. दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स यू नो रेगुलेट आपकी नींद, आपकी एनर्जी, योर हॉर्मोन्स, योर अलर्टनेस थ्रू द डे, ऑल ऑफ दैट. This is something that regulates all of that. And when you're forced to wake up before that system is ready for you, it basically can leave you feeling ekdam hi you know groggy and ekdam unfocused, disoriented, and also constantly playing catch up, because you're trying to catch up with things, right? You're trying to catch up with all your pending emails, your pending phone calls, people following up with you on things. Your body is not able to catch up on it. So modern life, it really does not help, right? Because late night aapka screen time chal raha hota hai, that's when you're most creative, you know, artificial lighting hai aapke paas itni sari, the noise that you're surrounded with if you're in a city, all of that can throw your internal clock out of sync, which means it is not going to be ready in time for you. And that doesn't mean ki yaar sab log matlab late, janbujhkar late soye, janbujhkar late uthe, 10 baje ke baad uthe. 10 baje aapka kaam shuru ho jana chahiye, but that obviously means your body should be ready way before that. But I feel like yeah, starting as early as 7-8 AM, that is not cool, because your body is not going to possibly be ready at 5 AM. That's something that I feel. What do you have to say about this? Do you also feel like, yes, usually you wake up, you know, all disoriented because of this? You feel like aapka kaam thoda late shuru hota, so it'll just help you adjust better? Or are you someone who still believes in the old tale which says, the earlier the start, the better it is for you? What do you have to say about that? Let me know, 800-106-2 pe. In the meantime, Dhurandhar se lut le gaya right here on Pick 106.2. This is the Beat of Bollywood.

0: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
1: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
2: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
4: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
3: अलराज कहाँ है, कहाँ है अलराज?
4: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
3: चलो चले अलराज।
5: दिस समर ड्राइव होम अ न्यू जेटोर एसयूवी। बाय नाउ पे नेक्स्ट ईयर जीरो वैट और जीरो इंटरेस्ट विद ईएमआई स्टार्टिंग फ्रॉम 966 दिरहम्स। टीएनसीज अप्लाई।
2: Listen to her every day.
6: Mugambo, खुश हुआ।
7: क्या करते सादा?
8: I work as a risk auditor.
7: Oh, risk auditor.
8: Local group, yeah.
7: क्या होता है ये risk auditor? किसके risk audit करते हैं आप? लोगों की जिंदगी के?

0: रिस्क ऑडिटर
1: क्या होता है ये? रिस्क ऑडिटर किसके रिस्क ऑडिट करते हैं आप लोगों की जिंदगी के?
0: मुझे नहीं पता यार, मैं पूछ रही हूँ ना पहली बार आपसे कि होता क्या है, क्या रिस्क ऑडिट करते हो?
2: बेसिकली वी ऑब्जर्व द प्रोसेसेस, द एसओपीज, द प्रोसेस नोट्स, लाइक हाउ गुड दे आर, आर देयर एनी लूप होल्स एंड इफ देयर आर एनी।
0: नेक्स्ट टाइम आई गो ऑन अ डेट आई एम टेकिंग यू साद, यू बी माय रिस्क ऑडिटर प्लीज, सो दैट आई डोंट गेट इनटू एनी मोर रिस्क इन लाइफ। फिलहाल वी विल प्ले द 5 सेकंड रूल, आर यू रेडी?
2: यस आई एम रेडी।
0: ऑलराइट, क्विकली नेम 3 माधुरी दीक्षित की मूवीज।
2: बेटा, दिल,
0: yeah. अरे वेरी गुड, मुझे लगा शुरू तो ऐसे किया था एकदम क्या हो गया आखिरी तक। 3 एडवाइस इन फैक्ट इन 3 वर्ड्स जो आप देना चाहोगे फेलो हस्बैंड्स को।
2: कीप योर माउथ क्वाइट, आई सेड ऑलवेज लिसन टू योर वाइफ।
0: या
3: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM टू 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
4: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
5: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
3: ये है जोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है,
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
3: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
0: It's 38 degrees Celsius outside, humidity फिलहाल काफी कम 34% पे, highs आज जाएंगे 38 से ज्यादा नहीं, lows जाएंगे आज 33 तक, it's going to be extremely hot and humid the rest of the day.
3: Alras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

0: सारा पूरा जिंदगी मोह माया के पीछे भागते रहे। लोग भूल जाते हैं सर कि कहाँ लेकर आए थे, कहाँ लेकर जाओगे, मिट्टी से निकले थे, मिट्टी में मिल जाओगे।
1: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
2: Three hearts, one friendship, one unforgettable journey. Madhok Films and Love Films present Cocktail 2. Starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon, Rashmika Mandanna. Directed by Homi Adijania. Releasing on June 19th all across the GCC in a cinema near you. Distributed by Marudhar. Powered by Big 106.2. Big 106.2.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

यार सारे गाने भी मुझे मेरी छुट्टी याद दिला रहे हैं। दरिया क्यों कहा, मुझे याद आ गया ना दरिया मॉल्डीव्स जो मैंने देखा था वहाँ पे। नहीं करो यार, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे अब, बिकॉज व्हेन यू कम बैक फ्रॉम दैट छुट्टी यू नो दैट वो एक रेसिडुअल फीलिंग्स ही रह जाती है, दैट यू नो you've come back but that place has not left you yet. I'm in that phase right now where Maldives has not left me yet and I feel like I'm just going to keep reminiscing and thinking about this chutti till my next chutti. But that's I think all of us, wo hum sab ki kar rahe hote hain, jab tak dusri chutti nahi aa jati pehli chutti ki yaadon mein hum base rehte hain. But talking about chutti, there are so many things that happen when you're on a trip, right? Usme se ek cheez mujhe discuss karni hai because I feel ye maine akele ne nahi notice kiya hoga, aapke sath bhi hua hoga. Aapne kabhi notice kiya hai hotels wagera mein jo sabun hota hai, the soap that they keep, hand soap, I'm not talking about the shower wala soap, the hand soap which they keep by the sink, wo soap jab aap use karte ho, no matter how much you wash, wo sabun aapke haath se nikalta hi nahi hai. I don't know if this is just me, but I felt like jitni bhi jagahon pe main gayi hu, how many ever hotels I've gone to, not the hand wash, the foam wala wash is good, but the soap that they leave is very very hard to rinse off. Aapki स्किन निकल जाए, आपकी चमड़ी पूरी निकल जाए, लेकिन वो साबुन नहीं निकलेगा. दैट्स समथिंग दैट आई नोटिस, बट देर आर सो मेनी सच थिंग्स दैट हैपन ऑन अ ट्रिप व्हिच आई विल कीप टॉकिंग अबाउट बिकॉज भाई माय शो इज डन टिल 2 एंड आई एम गोना मेक श्योर दैट आई शेयर ऑल माय ट्रैवल स्टोरीज विद यू. इफ यू रिलेट कॉल मी 800-1062 पे. इन द मीन टाइम कीपिंग यू कंपनी इज मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, जिसके बहुत ब्रिलियंट रिव्यूज मैंने सुने हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट इज वेल इन द नेक्स्ट आवर.

0: हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Carnival, the last ride, King.

0: Big Mix with Zohra on Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: Hanji Zohra ke saath on the Big Mix all the way until 2. I keep you company. Filhal, we're talking about something that I realized on this trip of mine, jisse main wapas aayi hoon, and I feel like, yaar, we need to bring back certain things. Matlab kuch cheeze we've left in the past, and it's good to leave them there because hum progress kar rahe hain life mein, aage badh rahe hain. But I feel like in that process na, aage badhne ke process mein, चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के प्रोसेस में, हम जो है आर्ट को ना भूले जा रहे हैं. लाइक आर्ट इन एवरी सेंस. आई फील म्यूज़िक के फॉर्म में तो हम बहुत बार बात करते ही हैं कि जिस तरीके का म्यूज़िक पहले बनता था, द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी यूज, द लिरिक्स, द एफर्ट दैट वुड गो इन टू मेकिंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड पुटिंग इमोशंस इन इट, इट्स नॉट द सेम एनी मोर. आजकल तो बस कुछ भी वर्ड्स रिपीट पर डाल दो, लूप पे चला दो, ऑटो ट्यून कर दो, गाना बन जाता है. सो यू नो, आर्ट जो है एज सच उसको प्रिजर्व नहीं किया जा रहा, दैट्स व्हाट आई फील. एंड इन एवरी सेंस, मतलब आप बिल्डिंग्स देख लो, आप इंटीरियर्स देख लो. मैंने ये बहुत जगहों पे नोटिस किया है कि एवरीथिंग दीज डेज टू लीव एन इमेज ऑफ रिचनेस और एलिगेंस हैज़ बिन मेड सिंपल, हैज़ बिन मेड स्लीक, हैज़ बिन मेड बेसिक. मतलब आप कोई चीज़ देखोगे ना जिसमें हैवी वुड वर्क होगा, हैंड पेंट किया हुआ चीज़ कुछ होगा, गोल्ड के टचेस होंगे एंड ऑल दैट, एंड यू फील लाइक वो इट्स सो क्रिंज. बट द मोमेंट यू सी अ प्लेन वाइट बेसिक ग्लॉसी फिनिश वाली चेयर, यू बी लाइक ओ वाओ दैट्स सो एलिगेंट, इट्स सो प्रिटी. व्हेन डिड वी फाइंड द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट बोरिंग थिंग्स ब्यूटिफुल ओवर समथिंग दैट इज ब्यूटिफुल, जेन्युइनली ब्यूटिफुल, दैट इज आर्ट, राइट? इतनी मेहनत गई है उस पर, लोगों की इतनी क्रिएटिविटी गई है उस पर, इतना थॉट, इतना इमोशन, कितना कुछ उसके पीछे गया. दैट्स अ होल स्टोरी बिहाइंड समथिंग दैट्स बिन मेड विद सो मच एफर्ट एंड हार्ड वर्क. आई फील लाइक इन दैट प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स ईजियर, मोर कन्वीनियंट, हम क्राफ्ट्समैनशिप को पीछे छोड़ जा रहे हैं. दैट्स जस्ट रियली सैड. मास प्रोडक्शन ऑल्सो उस चक्कर में भी ये जो आर्ट है उसको पीछे छोड़ा जा रहा है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है. इमेजिन लाइक अ सेंचुरी अगो, यू नो, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स वर क्रिएटेड विद दिस टाइप ऑफ एन इंटेंशन एंड विद दिस टाइप ऑफ हार्ड वर्क, हैंड पेंटेड चीज़ें, you know, buildings that were covered in very, very intricate, fine detail wala stone work. Log aajkal tickets, mehengi mehengi tickets book karke jaate hain just to see those type of buildings. Why? Because it doesn't exist anymore. And I feel like this trip has made me realize ki we need to bring back that. We need to bring back art. We need to start valuing those things again over the most basic, most boring things right now. Because, come on, just be honest. That is not what you genuinely find beautiful. Ek gana mujhe yaad aaya isi note pe. It's a Kunal Ganja wala song. The lyrics go, Tu be misal hai, teri kya misal dun? आसमां से आई है यही कह के टाल दूं, फिर भी कोई जो पूछे क्या है तू कैसी है, हाथों में रंग लेके हवा में उछाल दूं. दिस इज जेन्युइनली द वे यू शुड बी डिस्क्राइबिंग समवन यू आर इन लव विद एंड नॉट कोका कोला तू एक्स. डू यू अंडरस्टैंड माय फ्रस्ट्रेशन? प्लीज ब्रिंग बैक आर्ट.

0: खाम खा डर रही है। मुझे गुस्सा कभी आता ही नहीं।
1: गुस्सा आ जाएगा, कब आ रहा है? गुस्सा आ जाएगा,
0: आ रहा है। देखिए ये गुस्सा नहीं है।
2: Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ।
5: ये है ज़ोहरा on the Big Mix. On Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
2: बहुत. मैं अपनी फेवरेट हूँ.
3: ये है जोहरा on the Big Mix on Big 106.2, the beat of Bollywood.

हर कॉल और ऐप यूज करने पर पाइए गो चैट कॉइन्स। इन कॉइन्स को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
0: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
3: मत ही पूछो यार, वेदर क्या कर लोगे जान के, इतनी गर्मी हो रही है। 38 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, इट इज वेरी वेरी हॉट, एक्सेसिव हीट के अलर्ट्स भी गए हैं एंड ह्यूमिडिटी ऑल्दो इज स्टिल इन चेक, इट्स अ 35%, बट लोज विल ओनली ड्रॉप डाउन पोस्ट 8 PM एंड दैट इज गोइंग टू ड्रॉप डाउन टू ओनली 33. यो विद मी ज़ोहरा, दिस इज द बिग मिक्स।
0: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द UAE, ओमान, कतर, KSA एंड बहरेन। विजिट alras.me. बिग 106.2 बिग 106.2

0: Beat 106.2, the beat of Bollywood. This summer, get ready for a big surprise that will make the heat worth it. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Coming soon, only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network.
1: Think car rentals are expensive? Think again. Because right now, the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now. Because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. Selfdrive.ae. Your car, your price, your way.
0: Listen to her every day.
2: Mugembo! खुश हुआ।
3: मुझे यकीन था कि मैं इकलौती हो ही नहीं सकती हूँ। कई ऐसे लोग हैं मेरी तरह जो सिर्फ क्रिंज के लिए कंटेंट देखते हैं, एंड उसमें भी अपना अलग मजा है यार। एंड ऐसी ही ये मूवी थी। आई स्टिल लव दैट डायलॉग। आई थिंक ये रिश्तेदारों पे एप्लीकेबल होता है कि आर बिजनेस इज आर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। राइट, आई गॉट शंकर। हाय, गुड इवनिंग।
4: हेलो, गुड इवनिंग मासी।
3: मुझे लग रहा है कि आप मेरे बिछड़े हुए भाई हैं। आपका एल्गोरिथम भी उतना ही खराब होगा जितना मेरा है, क्योंकि आपने ये मूवी देखी है। देखते हो ना क्रिंज कंटेंट, एंजॉय करते हो?
4: वेरी क्रिंज कंटेंट, इंक्लूडिंग दोस कैट वाला मीम।
3: आई लव इट भाई। मैं तो आलू प्याज की शादियां,

0: मैं तो आलू प्याज की शादियाँ, गुलाब जामुन और रसगुल्ले पे चीट कर दिया। आई एम टेलिंग यू, यू माय लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर, वी वॉच द सेम कंटेंट, आई लव इट। आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, एंड वी आर आल्सो फैन ऑफ भाईजान, तो वो जो भी करते हैं इज आवर बिजनेस, आई एम फॉर श्योर।
1: भाईजान के लिए करना पड़ेगा,
0: भाईजान के लिए तो बस क्रिंज भी मंजूर है।
2: कीप योर इवनिंग्स इलेक्ट्रिक, 5 PM to 9 PM, द बिग थ्रिल विद मानसी, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग ट्रैफिक ब्रॉट टू यू बाय selfdrive.ae।
0: ट्रैफिक इज प्रीटी चिल कंसिडरिंग इट्स अ फ्राइडे, छुट्टी वाला दिन। अगर आप E311 पर है शेख मोहम्मद बिन ज़ायद रोड, लाइट ट्रैफिक मिलेगा हेडिंग टुवर्ड्स मर्डर सिटी सेंटर, वहां पे 5 से 6 मिनट का डिले। थोड़ा सा ट्रैफिक आपको मिल जाएगा एयरपोर्ट रोड पे D89, दैट्स द यूजुअल, जस्ट अबाउट अ 7 to 8 मिनट डिले ऑन दैट रोड। उसके अलावा थोड़ा सा ट्रैफिक आपको मिल सकता है इफ यू आर हेडिंग टुवर्ड्स ट्रेड सेंटर 2, वहां पे E11 शेख ज़ायद रोड पे आपको ट्रैफिक मिल सकता है अबाउट अ 5 to 7 मिनट डिले ऑन दैट रोड। साथ ही साथ अगर आप हेल्थ केयर सिटी के पास है तो वहां पे भी आपको D79 रोड पे लाइट से मॉडर ट्रैफिक मिल सकता है 8 से 9 मिनट का डिले। एनी अदर अपडेट यू कैन लेट अस नो 4305 पे।
2: selfdrive.ae नाउ ब्रिंग्स यू द मोस्ट अफोर्डेबल मंथली कार रेंटल्स इन द UAE, स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 899 दिरहम्स अ मंथ। बिग 106.2।
3: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो?
4: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2, The beat of Bollywood.

0: तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना?
1: बहुत, मैं अपनी फेवरेट हूँ।
2: ये है ज़ोहरा ऑन द बिग मिक्स ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

बट पार्टी नोट इट्स माय टाइम टू टेक योर लीव. मेरा भी फ्राइडे हो गया है शुरू. मेरी आवाज, मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो, डू गो चेक मी आउट ऑन इंस्टाग्राम. ज़ोहरा अमीन इज माय हैंडल ओवर देयर. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन 106.2 बिग एफएम फॉर ऑल द फन कंटेंट दैट वी पुट अप ओवर देयर एज वेल. मेक श्योर टू हिट द फॉलो एंड गो चेक आउट ऑल ऑफ आवर अमेजिंग पोस्ट्स. आई विल नाउ सी यू ऑन अ मंडे मॉर्निंग 10 से 2 के बीच. अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड एंड अ वेरी हैप्पी फ्राइडे.

0: खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsuranceMarket.ie.
1: Song of the Hour brought to you by Insurance Market Ujjwal Khanna ke saath Big 106.2 pe. This is The Big Life.
2: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Zara se nahi milti, ye to matlab pura proper ek glass milta hai. See, ek glass piyo naal ode chhole pature. And then you realize, oh my god, what have I done to myself? Well, that's the best breakfast, lunch, whatever that you have, especially when you go to Delhi or you go to the sides of Amritsar. What am I talking about today in Food Trails? Ye riddle hai jo suniye aur ye jo drink hai uski baat ho rahi hai aaj. Okay, I'm a rich drink that is heavy and sweet. On a hot summer day, I'm the ultimate treat. Churned slowly from yogurt and served in a glass with a layer of malai that oozes top class. Now, a lot of people will make faces. मलाई के नाम पे, पर इसके साथ तो मतलब मलाई जाती ही जाती है. यू कैन नॉट नॉट हैव मलाई विद दिस. अगेन, आई एम अ रिच ड्रिंक दैट इज हैवी एंड स्वीट. ऑन अ हॉट समर डे, आई एम द अल्टीमेट ट्रीट. चर्न स्लोली फ्रॉम योगर्ट एंड सर्व्ड इन अ ग्लास विद अ लेयर ऑफ मलाई दैट ओजेस टॉप क्लास. चम्मच से खाओ मलाई और साथ में एक घूट मारते जाओ. इनफैक्ट अब तो इन्फ्यूज्ड ये ड्रिंक है जो आती है विद लॉट ऑफ फ्लेवर्स. 800-1062 इज माई टोल फ्री नंबर, विच इज 800-1062. आई रिपीट 800-1062 डाल इन राइट नाउ एज आई गिव यू दिस एब्सोल्युटली डिलीशियस ट्रैक. जैसा ये ड्रिंक है, द ट्रैक इज पहली बार मोहब्बत की है आपके साथ. अंटिल 5 आप सुन रहे हैं द बिग लाइव, बिग 106.2 पे. मोहित चौहान की आवाज़.

0: एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं बटते। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ मेरा। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो जो चाहे लगा लो, डर कैसे।
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। The Big Breakfast with Sid. Weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2. Brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding. Big 106.2.

0: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: कभी अली दुना कहना से गाना प्रसुना सोनू निगम की आवाज़, द ट्रैक इज तुम ही देखो ना, एब्सोल्युटली गॉर्जियस सॉन्ग, सब कुछ इतना खूबसूरत लगता है इस पूरे गाने में, चाहे वो सेट हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, शाहरुख खान रानी ऑफ कोर्स वो तो लग ही रहे अच्छे, एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ करण जौहर इज, बट इट कम्स टू सिनेमैटिक ब्रिलियंस ही जस्ट ब्रिंग्स सो मेनी कलर्स, एंड इनफैक्ट जितने भी बैकग्राउंड डांसर्स हैं अगर आप देखेंगे इस गाने में, इफ यू विविडली रिमेंबर दिस, तो वही कॉस्ट्यूम के कलर है, वही सेट का कलर है जो आगे रानी और शाहरुख ने पहना हुआ है।
1: द बिग लाइफ विद उज्ज्वल ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
0: लाइक वन सॉन्ग वन लुक वन थीम, दैट वाज द आइडिया ऑफ द सॉन्ग, एंड दैट्स एग्जैक्टली द आइडिया ऑफ दिस ड्रिंक आल्सो दैट आई हैव आस्क्ड। इसको खाने के बाद, पीने के बाद रादर, दो चार घंटे आपको पता नहीं होता आप कहाँ पहुंचे हुए हो। That is because it has got a lot of sucrose, which is like sugar, into this. I'm a rich drink that is heavy and sweet. On a hot summer day, I'm the ultimate treat. Churned slowly from yogurt and served in a glass with a layer of malai that oozes top class. What am I? And the correct answer is, of course, lassi. Hina, thank you very much for your answer. Yes, very tasty. And it's like a lethal combination. छोले भटूरे एंड लस्सी बैक इन इंडिया, स्पेशली इन दिल्ली अगर आप जाते हैं, और उसके बाद आपको इतना भारी नाश्ता करने के बाद चार पाँच घंटे की जो एकदम सेट नींद आती है ना, आपको पता नहीं होता कि दुनिया कहाँ है, आपको कुछ होश हो हवास नहीं होगा। इट इज़ दैट ड्राई अ ड्रिंक। एनीवे, यू नो, टॉकिंग अबाउट मीठी लस्सी, ये जो वैदिक रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो इट जस्ट गोज वे बैक इन टू आयुर्वेदा एंड संस्कृत एंड मेडिकल लिटरेचर, और मेडिसिनल पर्पज के लिए भी लस्सी जो थी वो यूज़ होती थी, विच वॉज बेसिकली चर्न्ड कर्ड टू कूल द बॉडी, ईज द डाइजेस्टन एंड पैसिफाई इटर्नल दोषाज, जो अंदर की भी एनर्जीज हैं। तो अगर कुछ है साफ करना है तो लस्सी इज वॉट वॉज प्रिस्क्राइब इन द एंशियंट लिटरेचर एज वेल, एंड ऑफ कोर्स देन इट गॉट इन टू द sweet lassi flavor and it became a practical drink literally at any of the hawkers back in India. So agar is bar ye garmi mein jane ka koi hisab kitab ban raha aapka, summer vacations may try this big big gigantic glass of lassi and you'll be like, yes, I think I've got my ultimate smoothie. Fast track song of the hour brought to you by Self Drive.
1: Beat 106.2 fast track song of the hour brought to you by selfdrive.ae.

0: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
1: थ्री हार्ट्स वन फ्रेंडशिप वन अनफॉरगेटेबल जर्नी। मैडॉक फिल्म्स एंड लव फिल्म्स प्रेजेंट कॉकटेल 2 Starring Shahid Kapoor, Kriti Sanon, Rashmika Mandanna. Directed by Homi Adijania. Releasing on June 19th all across the GCC in a cinema near you. Distributed by Marudhar. Powered by Big 106.2.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
1: Naam Ujjwal on the Big Life on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है? दुनिया में यूं ही होता है, ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं। दिल आखिर तू क्यों रोता है?
1: बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
2: थिंक कार रेंटल्स आर एक्सपेंसिव? थिंक अगेन, because right now the most affordable monthly car rental in the UAE is here for just 899 dirhams. Yes, 899 dirhams a month. Search selfdrive.ae or download the app now, because when the monthly car rental price is this affordable, you don't wait. selfdrive.ae, your car, your price, your way.
1: Big 106.2. That's My Song by E-End.

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurance Market.
1: Song of the Hour episode brought to you by Insurance Market from the film Khamoshia. What a great, great film it was. Manisha Koirala ki finest performance thi. Saath mein thi Salman Khan, Nana Patekar. Oh my God, what a film. And sari hi compelling films banayi hai Bhansali ne. And that's why he's the most reckoned name in Indian film industry. It's his special today. 27 saal hue hum dil de chuke Sanam ko.
2: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: Kal, and again, it was a masterstroke film. Sheba Chadda, jo behen thi, jinko bhagaya tha Aishwarya aur Salman ne, ghar se, mehel se, remember? Phir jo baad mein aa gayi thi, and you know, she was the rebel. And then of course, Aishwarya took a lead from her, and she also wanted to do the same thing, lekin kahani mein kuch twist ho gaya tha. But anyway, Sheba Chadda, she talks about Hum Dil De Chuke Sanam ka star cast. This is what she was saying.
3: Pehli baar, matlab Aishwarya Rai, Salman Khan, ye sab लोगों को के बारे में सुना ही था और तो उनके साथ इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम या काफी भरा पूरा टाइम आई वुड थिंक या आई थिंक सब जानते हैं उनके बारे में कि वो बहुत ही पैशनेट डायरेक्टर हैं बहुत और उस वक्त तो आई थिंक वो और काफी यंग थे तो अलग तरह का एक जुनून एक पैशन क्योंकि अभी मैं उनसे कुछ एक डेढ़ साल पहले मिली थी तो आई कुड सेंस कि उनमें कितना फर्क सा लगा मुझे लाइक कि बहुत ज़्यादा कामर जेंटलर लगे मुझे बट आई डोंट नो अभी वो सेट पे कैसे हैं
1: अभी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट और टाइट हो गए हैं That's what I've heard, like the tabloid stories of what Bhansali is on sets in real life. Anyway, the film is like a million bucks sets. Usi film se gana the track is Aankhon Ki Gustakhiyan, Salman and Aishwarya. Take it away, aapke saath until 5. This is The Big Life.

0: बदमाश।
1: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
2: ये है उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: 106.2, the beat of Bollywood.
1: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
2: ईश्वर की प्रार्थना करने का क्या फायदा जब उसकी दी हुई जिंदगी की कदर करना ना जाना।
3: सुनो, जियो, खुश रहो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो।
0: नाम उज्जवल ऑन द बिग लाइफ ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

और ऐप यूज करने पर पाइए गोल्ड चैट कॉइंस। इन कॉइंस को रिडीम कीजिए अमेजिंग डिस्काउंट वाउचर्स, वीआईपी सब्सक्रिप्शंस, स्टिकर्स और बहुत कुछ के लिए। गोल्ड चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से।
1: ये है उज्ज्वल ऑन द बिग लाइफ ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: The Big Life with Ujjwal on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Big 106.2 पे उज्ज्वल खन्ना के साथ टाइम टू रैप इट अप। मेरे साथ आ गई है मानसी इन द स्टूडियो। शुक्रवार के साथ शुक्र है आ गया, ये तो मतलब जीती शुक्रवार के लिए है ये लड़की।
2: आई डोंट थिंक सो, मेरे साथ कोई डिसएग्री करेगा, हम सब वीकेंड टू वीकेंड जीने लगे हैं।
1: मतलब संडे के बाद फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे फ्राइडे
2: मुझे फ्राइडे नाइट ना ज्यादा अच्छी लगती है सैटरडे नाइट से।
1: व्हाई? बिकॉज़ तो फिल्म देखने जा रही है इसलिए।
2: बट अपने आप में यू नो फ्राइडे नाइट इज मोर रिलैक्सिंग दैट सैटरडे नाइट। सैटरडे नाइट को पता होता है आपको कि अगले दिन संडे, देन यू गेट बैक टू वर्क। तभी वो ऐसी फीलिंग होती है कि एकदम काम खत्म हुआ है, सैटरडे है, संडे है। आई डोंट नो, देयर इज समथिंग वेरी मैजिकल अबाउट
1: फ्राइडे नाइट। सो देन व्हाट्स द मैजिकल टुनाइट दैट इज हैपनिंग?
2: डॉक्टर बहु
1: मुझे लगा बोलेगी कॉकटेल 2 देखने जा रही हूँ, मैं वापस आऊंगा देखने जा रही हूँ।
2: मैं कॉकटेल 2 देखूंगी बट आई थिंक ऑन संडे।
1: अच्छा, रश्मिका का तूने इंटरव्यू लिया, वी हैव जस्ट पुट इट ऑन 106.2 बिग एफएम। टेल मी कैसी है, मतलब इज शी लाइक द कैरेक्टर दैट शी इज प्लेइंग और शी इज लाइक प्लेइंग समथिंग
2: एल्स? शी टोल्ड मी दैट शी इज very unlike the character Diya in the movie. She's very different. She doesn't really resonate personally with her.
1: Okay.
2: But main excited hoon because a cocktail hai.
1: Yeah.
2: And Shahid and Kriti, I really like them on screen together.
1: Hmm.
2: Teri baaton mein samajh aaya again. Yeah, you know, yeah, their chemistry is very effortless.
1: Well, let's see. If you've got any plans, you know, you just keep winning all these tickets on Big 106.2 open couple tickets. So if you've got a chance to sort of watch Cocktail 2, please let us know. Agar aapne dekh li already, agar aap dekhne ja rahe hain ki kaise lagegi aapko film, please bataiye hame. And I hope, you know, it sticks and lives up to the expectation of Cocktail 1, of whatever the benchmark was set. And hopefully, you know, you'll have a great breeze, which is like a summer getaway is what they're saying.
2: And that to Italy. Oh God, mujhe to usse zyada mujhe Italy dekhna.
1: तो पिज्जा खाया पीछे, हम उतना ही कर सकते हैं इटली के नाम पे।
2: कॉकटेल 2 जाके इटली के दिन याद कर सकते हैं। बट फिलहाल दिन याद करने से याद आया, I sent a reel to Ujji and he was the one who introduced me to this song.
1: Yeah, it's the Sahotas, man. I just love this song. 90s ke bachchon ka favorite gana hai ye. Bahut kam logon ko pata hoga ye gana, lekin itna popular, itna pyara meetha gana hai na, that you just cannot not listen to this track.
2: It's gonna ring a bell when you listen to the gana. Aapko bhi suddenly yaad aaya tha ki haan suna hai kabhi. Filhal thank you ji, aa jao main.
1: Haan, you take over. I shall see you on Monday from 2 till 5 on Big 106.2. We're part of Fun Asia Network.

अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: You know, जब मैं स्कूल में थी तो मैं एक डिक्शनरी लेके घूमती थी. ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी सबके पास होगी. वो अभी डिक्शनरी मेरी उज्जवल खन्ना है. किसी ने मुझे आज कॉम्प्लीमेंट दिया. बंदे ने बड़ी भारी इंग्लिश यूज करी है, सार्टोरियल. मैंने उज्जी से पूछा, उज्जी इसका रिप्लाई क्या करना है, सार्टोरियल क्या होता है? मुझे लगा सरकास्टिक बोल रहा है. देखो मेरी भोपाल वाली इंग्लिश है तो मुझे इतने भारी वर्ड्स नहीं आते हैं, बट अगर शशि थरूर लेवल के कोई वर्ड्स यूज करेगा देन उज्जी इज द पर्सन. फिलहाल इट्स द वीकेंड, ऑल सेट टू कीप यू कंपनी अनटिल 9. वी हैव गॉट सम फैंटास्टिक म्यूजिक लाइंड अप फॉर यू विद सम शप्पे. कॉकटेल 2 भी आज रिलीज हो गई है, प्लस दिस आइकॉनिक मूवी उसकी एनिवर्सरी भी हमने सेलिब्रेट करनी है. एंड वी आर प्लेइंग द 5 सेकंड रूल. इट्स अ फन गेम. व्हाइल यू आर हेडिंग होम यू गेट 5 सेकंड्स. आई गिव यू अ फ्यू कैटेगरीज. तीन चीजें बतानी होती हैं 5 सेकंड के अंदर. अगर लगता है कर लोगे तो 800-1062 इज द नंबर टू डायल. फिलहाल किक स्टार्टिंग द शो विद

0: You are listening to Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: This summer, upgrade your drive with Jetor. Take advantage of unbeatable summer offers, such as buy now, pay next year, zero VAT or zero interest. And that's not all. Enjoy savings of up to 7,000 dirhams on select models, with EMIs starting from just 966 dirhams per month. Plus, every drive comes with peace of mind, thanks to a warranty of up to 1 million kilometers. Visit Jetor showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetor UAE. Part of Elite Group Holding. TNCs apply. A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
2: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
3: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं, जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
2: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
3: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जाद, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
2: चलो चले अलराज।
4: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. Insurancemarket.ae.
0: Big traffic brought to you by selfdrive.ae.
5: Not really big, but patchy traffic at the moment. Agar aap Alkuz Industrial Area ke aaspaas hain, there's traffic near Dubai Design District, Business Bay, DIFC, 25 to 30 minute delay. Also patchy traffic on the Sheikh Mohammed bin Zayed. Anything else you'd like to report, let me know. 800-1062 par.
0: Selfdrive.ae now brings you the most affordable monthly car rentals in the UAE, starting from just 899 dirhams a month. Big 106.2.
6: आराम से रहने का, ठंडा पानी पीने का, टीवी देखने का, मौज करने का, बस ये मामू सब सब सब सब सब कुछ अपना समझ।
7: क्या बोल रहा है तू यार, प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं।
0: Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: खुद को रखिए एंटरटेन्ड एक ही ऐप के साथ। मूवीज देखिए, गेम्स खेलिए और न्यूज पढ़िए। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: 40,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Bringing in the weekend, Mansi, plus also decoding this research that says men at work enjoy gossip as much as women do. But yese gossip ka naam nahi, networking strategic updates ka naam dete hain. Dilip with us. Hi Dilip.
3: Hi, yo, Mansi.
2: आपकी आवाज नहीं आ रही सर. थोड़ा सा अगर आप नेटवर्क के पास आ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसी हूँ. मैं तो एकदम लाजवाब हूँ. आप कैसे हो?
3: बस बस बिल्कुल ठीक है. अच्छा लगा मानसी बात करकर. रेडियो पर सुनता हुआ पहली बार कॉल भी लगा.
2: हाय स्वीट दिलीप, मुझे एक बात बताइए, आप ऑफिस में गॉसिप करते हो?
3: गॉसिप करता है, थोड़ा बहुत करता है, ऐसे एंटरटेन के हिसाब से नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर कर ले वो हिसाब.
2: मैंने कहा ना, ये लोग गॉसिप का नाम नहीं देते, ये कहते इन्फॉर्मेशन गैदर करना, स्ट्रेटेजिक अपडेट, ये बस एस्थेटिक उसको वर्ड्स दे देते हैं. तो आप भी जाते हैं ना इधर उधर लोगों से पूछने, और भाई इसका अप्रेजल हुआ कि नहीं, ये कब जाएगा, इसने रिजाइन किया कि नहीं, है ना, कुछ
3: होना.
2: चलो एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि आप ऑनेस्ट हैं कि आप भी उतनी ही गॉसिप करते हैं. इनफैक्ट कई ऑफिसेज में आई वुड नॉट लाइक टू कोट, शायद मेरा, लड़के ज्यादा गॉसिप करते हैं. फिलहाल दिलीप क्या प्लान वीकेंड का?
3: वीकेंड का कोई नहीं, बस बर्थडे पार्टी वगैरह है तो उसके लिए ज्वाइन
2: करना. वेरी नाइस, बिजी बिजी सोशल बटरफ्लाई. फिलहाल हम खेलेंगे 5 सेकंड रूल, मजेदार गेम है. आपको मिलते हैं 5 सेकंड. मैं कैटेगरीज दूंगी, 3 चीजें आपने बतानी है 5 सेकंड के अंदर. ऑल द बेस्ट.
1: 5 सेकंड रूल.
4: ओह यस.
2: 3 करिश्मा कपूर की मूवीज.
3: ये मूवी पे तो मैं बहुत पीछे हूँ.
2: अच्छा, तो आप नहीं देखते हैं फिल्में?
3: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं इतना ज्यादा नहीं.
2: तो क्या करते हैं अपने फ्री टाइम में? गाने सुनते हैं?
3: गाने, हाँ गाने सुनते हो.
2: तो 3 गाने जिनमें दिल आता है.
3: गाने तो दिल में आता है.
2: नहीं, आपके दिल में नहीं आता है, गानों में दिल आता है. इसमें टाइम खत्म हो गया दिलीप जी. ये फटाफट खेलने वाला गेम है, 5 सेकंड के अंदर बिना सोचे जवाब देना है. 3 चीजें दादा येलो इन कलर एंड आप खा भी सकते हैं.
3: मैंगो, फिर
2: अरे
3: और
2: मैंने कहा था ना बेसन का लड्डू. ये लड्डू लगता है गेम, बट आसान नहीं है ये. 3 ऐसी चीजें जो आपको अपने कॉलीग्स के बारे में बिल्कुल पसंद नहीं है.
3: कॉलीग के बारे में जो जोर जोर से खाने टाइम आवाज करते हैं.
2: That is so unique. जोर जोर से खाने के टाइम आवाज करते हैं, which I think is a problem for me also. अगर खाने के टाइम कोई आवाज करता है तो मुझे थोड़ा सा हो जाता है. It's not something that I like.
3: Right, absolutely.
2: 3 ऐसी चीजें सर जो आप अपनी बीवी से छुपाते हैं. ऑफिस की बातें. क्यों, ऐसा क्या होता है आपके ऑफिस में जो बीवी को नहीं बता सकते हो आप?
3: ऑलरेडी टेंशन लेके घूमता रहता है, वो भी मैं घर पे आके दे दूँ तो फिर इसके लिए तो
2: मेरा पति कैसा हो, दिलीप जी जैसा हो.
1: 5 सेकंड रूल.
4: ओह यस.
2: सर आपने एक भी जवाब 5 सेकंड के अंदर नहीं दिया. बड़ा बड़े क्यूट हो यार. एक तो आप बड़े सच्चे हो, आपने सब सच बता दिया. Have a great weekend. किसका बर्थडे, किसके बर्थडे पे जा रहे हो?
3: एक्चुअली दोस्त का बेटी का बर्थडे, तो मैं सोचा है उसके लिए प्लान कर रहा है, कभी जाके कोई गिफ्ट खरीद लो एटलीस्ट. चलो बहुत बिजी हो जाएगा.
2: मुझे ऐसा लगता है दिलीप आप अपने कॉलर का ऊपर वाला बटन भी बंद करके ऑफिस जाते होगे ना. है ना, वैसी वाली वाइब आ रही है. अच्छा, एक आध दो बटन खोल लेते हो. चलो जी, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड थैंक यू सो मच. ये 5 सेकंड रूल आपने खेलना है, एक ही रूल है, 800-1-0-6-2 पे कॉल करना है.

ज्यादा तो मैं भी शरीफ हुआ था, पर शराफत से अपनी कभी नहीं बना। जरा हम भी तो देखे कि हम से बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया।

This one from Dhurandhar. इसी के साथ we've got the brand new version OG गाना 90s का है, ममता कुलकर्णी पे फिल्म आया. Recreated for एक दीवाने की दीवानियत, जो actually Gen Z's को बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने अभी तक देखी नहीं है. Coming up, break your spark.

0: अरे ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: Wow.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening. Friday ki sham hai. The weekend is right here. And over the weekend, this cult classic will complete 13 years. 13 saal ho chuke hai is masterpiece ko. And maine kaha na, har nakam aashik, har dil toote aashik ki प्लेलिस्ट में इस मूवी के गाने हैं एंड बार बार हम ये मूवी रिविजिट करते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, एक जो रॉक स्टार के दीवाने हैं, एक इस मूवी के दीवाने हैं, और मेरी तरह जो कई बार आशिकी में नाकाम हुए हैं, मुझे दोनों ही मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं. टेक्स मी टू अनदर वर्ल्ड. सो या ऑन द 21st ऑफ जून दिस संडे द मूवी कंप्लीट्स 13 ईयर्स. ए आर रहमान का म्यूजिक, आनंद एल राय की मूवी. इनफैक्ट व्हेन धनुष एक्चुअली साइन दिस मूवी, उन्हें हिंदी का एक शब्द नहीं आता था एंड उन्होंने सारे डायलॉग्स रट लिए थे. इनफैक्ट डायलॉग्स आज भी इवन आफ्टर 13 इयर्स आर सो पॉपुलर. अगर आपके फ्रेंड ग्रुप में भी कोई कुंदन जैसा आशिक है और आप उसके मुरारी हैं, तो इसके डायलॉग्स आप भी बार बार रिपीट करते हैं. द पीपल हु लव दिस मूवी दे ऑलरेडी नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. फॉर ऑल दोज हु डोंट,
3: पर अब उठेगा कौन से मेहनत करे दिल लगाने को, दिल तोड़वाने को. अबे कोई तो आवाज देके रोक लो. ये लड़की जो मुर्दा सी आंखें लिए बैठी है बगल में, आज भी अगर बोल दे तो महादेव की कसम वापस आ जाए. पर नहीं,
2: अब सुड़ी नहीं है.
3: आंखें मूंद लेने में ही सुख है, सो जाने में ही भलाई है. पर उठेंगे किसी रोज उसी गंगा किनारे डमरू बजाने को, उन्हीं गलियों में दौड़ जाने को, किसी जोया के इश्क में फिर.
2: I have goosebumps and I love this movie. And there is a group of people on Instagram that follow me and we talk about this movie every now and then. Hum iski reels, iske memes share karte hain. Let me see how many of you remember. Kitne dil toote nakam aashik hai jinko ye movie yaad hai. 13 saal hone wale hain. 800-1062 is the number to dial. If you remember the movie, give me a call.
1: Big

0: when she is on air, rules don't apply. Laughs, wings, and wicked fun. Come on, come on. Fasten your seatbelts. The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. Brought to you by selfdrive.ae.
1: Good evening, you have Big Thrill and Mansi. It's the weekend. And of course, this weekend, one of my all-time favorite movies is completing 13 saal. It is a cult classic. In fact, jab ye theater mein aayi thi, logon ko theek lagi thi. But over time, thanks to heartbroken lovers, ye ban gayi hai unke liye the masterpiece, Anand L. Rai ki. In fact, हाल ही में लास्ट ईयर इसका एक सीक्वल काइंड ऑफ भी अनाउंस हुआ था, आया भी था कृति सैनन एंड धनुष, बट पीपल डिड नॉट लाइक द मूवी एज मच एज दे लव द ओजी वन. कंप्लीटिंग 13 इयर्स, आइकॉनिक डायलॉग्स थे इस मूवी के. एंड लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द मूवी. मुरारी, कुंदन, बिंदिया एंड जोया. व्हाइल यू आर गेसिंग कौन सी मूवी है, आई एम गोना किक स्टार्ट दिस आवर विद

0: वॉइस। मेरे साथ प्रॉम जाने के लिए तुम सबको 3 डिपार्टमेंट्स में ब्रिलियंट होना चाहिए, एंड दैट इज गुड लुक्स एंड गुड लुक्स।
1: नाम है मानसी ऑन द बिग थ्रिल, ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। In the morning, the big breakfast with Sid, weekdays from 6 to 10 a.m. on Big 106.2, brought to you by Henna Speedy Easy Hair Color and Jetor UAE, part of Elite Group Holding.
2: Insurance Market. AE. 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Built in the UAE, trusted across the UAE. Insurancemarket.ae.
3: A car for rent at just 899 dirhams per month. Nothing even comes close. No ownership, no commitment. Just drive. Book now on selfdrive.ae. Your car, your way.
4: Wow, your hair color looks stunning.
5: Thanks, I did it myself this morning in 5 minutes.
4: Yeah, right.
5: No, it's Henna Speedy Easy Hair Color that's made in Italy. It's ammonia-free and enriched with henna extract and argan oil.
4: Really?
5: Yeah, and with the easy comb applicator, it just takes 5 minutes.
4: I'm buying it right now.
5: Get maximum gray coverage, vibrant color and a natural looking finish with Henna Speedy Easy Hair Color, made in Italy.
6: लगता है बर्फ पड़ने वाली है।
7: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा।
1: बिग वेदर अपडेट ब्रॉट टू यू बाय अलरास, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट।
8: 34 डिग्रीज आउटसाइड, लो जाएगा अराउंड 32। फिलहाल ह्यूमिडिटी है 52% पर।
1: अलरास ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स, द नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर इन द मिडल ईस्ट विद 25+ आउटलेट्स स्प्रेड अक्रॉस द यूएई, ओमान, कतर, केएसए एंड बहरेन। विजिट अलरास.me। बिग 106.2।

0: 30,000 Google reviews with a 4.8 star rating. Every review is a story of trust. InsurersMarket.ie.
1: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
2: Good evening, यह बिग थ्रिल मानसी राइट ऑन बिग 106.2 पर फनिश नेटवर्क. एंड अगर आप भी काफी टाइम से बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आइडियाज भी हैं एंड यू आर थिंकिंग कि क्या ये आइडिया काम आएगा, बस यू हैव टू टेक दैट रिस्क. लेट मी टेल यू, आई वाज रीडिंग दिस मैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ही क्रिएटेड शिप योर एनिमीज ग्लिटर, वेयर इन न्यू ईयर्स ईव पे एक सर्विस इन्होंने इंट्रोड्यूस करी टू अनोनिमसली मेल एंड एनवेलप कंप्लीटली पैक्ड विद ग्लिटर टू समवन दे डिसलाइक्ड. इट टैप्ड इनटू हाईली रिलेटेबल इंटरनेट ह्यूमर. द वेबसाइट जनरेटेड ओवर 1.3 मिलियन पेज व्यूज इन द फर्स्ट 24 आवर्स एंड लेटर द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी सोल्ड दिस वेबसाइट फॉर $85,000. सो नो बिजनेस आइडिया इज अ बैड बिजनेस आइडिया एंड इफ योर आइडिया इज रेडी देन जस्ट गेट इन टच विद अजमान फ्री जोन अथॉरिटी. देव introduce the one click business license. This is great news for all those who wish to open their small or medium sized enterprise with the fee starting from 5555 dirhams. To get your business license, all you need is a business idea. Baki they'll take care of your visa, your bank requirement. Bahut hi quick, completely digitized hai pura process. TNCs do apply. To get your one click license, any more information, visit afz.ae.

0: गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। इस जमीन और इस आसमान से परे जहां ना वक्त ना तुम्हारे मेरे सिवा कोई और, बस एक जज्बा हो कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में।
1: Big 106.2, the beat of Bollywood.

गुड इवनिंग, फ्राइडे की शाम है एंड आज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मूवी जो 13 साल कंप्लीट करने वाली है संडे 21 जून को. मुरारी, कुंदन, बिंदिया, जोया, इफ दिस रिंग्स अ बेल लेट मी नो. द मूवी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट आनंद एल राय की मूवी है. इनफैक्ट धनुष वॉज द लीडिंग एक्टर एंड ही हैड टू लर्न हिंदी के साथ साथ यूपी डायलेक्ट. इनफैक्ट मूवी से पहले एक शब्द हिंदी का धनुष नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने सारे डायलॉग्स रटे एंड देयर वॉज अ टीचर स्पेसिफिकली टू टीच हिम द यूपी डायलेक्ट. अगर आपको याद आ गया कौन सी मूवी है, कमाल गाने थे, रहमान साहब का म्यूजिक. इफ यू रिमेम्बर द मूवी, 800-1062 इज द नंबर टू डायल.

0: ये यहाँ क्या कर रही है? मेरा मेकअप लगा रही है? क्यों ही? तेरे बाप का माल है?
1: ठीक है, माल तेरे बाप का ही सही, मगर मैंने थोड़ा सा लगा लिया तो तेरे बाप का क्या जाता?
2: This is Mansi on the Big Thrill, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: The Big Thrill with Mansi on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
1: फ्राइडे की शाम है, वी आर ब्रिंगिंग इन द वीकेंड. संडे को 21 जून को इस मूवी को 13 साल होने वाले हैं. इट्स अ कल्ट क्लासिक. कुंदन, मुरारी, बिंदिया, जोया, आई हैव सीन दिस मूवी जिलियन टाइम्स. ऑफ कोर्स अभय देओल एज जगजीत. एंड मैंने कहा था कि जितने भी नाकाम आशिक होंगे उन्हें 100% इस मूवी का एक एक डायलॉग याद होगा. एंड मुझे कुछ प्ले करने की जरूरत नहीं है, यू विल गेस द मूवी. राइट नाउ वी हैव गॉट ब्यूटी. हाय ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम.
2: थैंक यू, थैंक यू.
1: So beauty, I am assuming you're not Kundan. You, I'm sure, are Zoya in someone's life. जिसका नाम ही beauty है, वो कहाँ नाकाम आशिक होगा, है ना?
2: Yeah.
1: अच्छा था कोई?
2: Yeah.
1: I understand you moved on in life, but I'm sure there must be a few Kundans during your school and college times.
2: Been there, done that, yeah.
1: तो ऐसा कुंदन वाला थप्पड़ अपड़ मारा था आपने अपने स्कूल टाइम वाले को? 16 बार सोनम कपूर ने थप्पड़ मारा था जोया ने? बट वो बंदा, उसकी शादी हो गई है कि वो अभी तक आपकी प्यार में जो है गाने सुन रहा है इस मूवी के? फिलहाल 13 years, 13 साल ब्यूटी ऑफ दिस अमेजिंग मूवी. बिफोर पीपल स्टार्ट गेसिंग किस मूवी की हम बात कर रहे हैं, कुंदन, जोया, मुरारी,
2: इट्स रांझना.
1: इट इज इंडीड रांझना. व्हाट अ ब्रिलियंट मूवी, राइट?
2: यस.
1: हु वाज योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम द एंटायर लॉट?
2: I think of course Dhanush was good, and then I also like Zeeshan Ayub's character.
1: Yeah, Murari. Really nice. Yes, I even liked Swara Bhaskar as Bindiya. She was also very good in the movie.
2: Yes, she was also very wrong.
1: Yeah, जब वो डायलॉग है ना कि विटामिन हमसे लो और आशिकी उनसे लड़ाओ. What dialogues? Any favorite song? Album भी बड़ी अच्छी थी. कोई favorite गाना?
2: I think the title track is amazing. Ranzna, you can listen n number of times. It's an amazing track by A.R. Rahman.
1: Who took you to the theater to watch this movie?
2: Actually, I have a very core memory. All of college people, like all of our batchmates, we went for this movie at 12 a.m. in the night. We were in Bangalore at that time.
1: Wow!
2: So we were all, we were a group of bunch of people, and it was amazing.
1: वो college वाला कुंदन भी होगा उसमें group में. ब्यूटी बोलेगी क्या मैंने इसको फोन कर दिया, ये मेरी कॉलेज की पोल खोल रही है. बट वी ऑल हैड कुंदन्स एंड वी हैव ऑल बीन कुंदन्स फॉर समवन, बट दैट इज कॉलेज लाइफ फॉर अस. बट फिलहाल वी टॉकिंग अबाउट रांझना कंप्लीटिंग 13 years. लेट्स प्ले द टाइटल ट्रैक.
2: यस यस, डेफिनेटली.
1: हैव अ ग्रेट वीकेंड ब्यूटी. आई लव द नेम यार, बड़ा अच्छा नाम है ब्यूटी.
2: थैंक यू, थैंक यू. बाय.

0: अपने लव्ड वंस को रखिए हमेशा क्लोज और एंजॉय कीजिए फ्री 1-to-1 और ग्रुप HD वीडियो और वॉइस कॉल्स फन फिल्टर्स के साथ। गो चैट ऐप डाउनलोड कीजिए आज ही।
1: बिग 106.2

0: 96.2 The Beat of Bollywood.
1: Hello.
2: कोई रोमांटिक गाना सुनाओ ना. हेलो, सुन रहे हो ना?
3: हे,

0: खिलाने पिलाने और जमीन बाहर पसारे बोल रही थी कि हाउस मार्क कि तू मुझे मिला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया के पैर का पैराशूट भी स्लोली स्लोली स्लोली।
1: Big 106.2.

0: 106.2 The Beat of Bollywood.
1: लगता है बर्फ पड़ने वाली है.
2: कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा.
0: Big weather update brought to you by Al Ras, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East.
3: कोई बर्फ नहीं गिर रही है. बर्फ क्या, बंदा पिघल रहा है. भारत 36 degrees फिलहाल, लो जाएगा 33 तक. ह्यूमिडिटी कम है आज 48% पर.
0: Ras Auto AC Spare Parts, the number one auto AC spare parts dealer in the Middle East with 25 plus outlets spread across the UAE, Oman, Qatar, KSA and Bahrain. Visit alras.me. Big 106.2.

Loved her an animal and can't wait to see her as Diya in Cocktail 2. मैं बात कर रही हूँ रश्मिका मंदाना की and I spoke to her the other day. The video is up on our Instagram page. Go and check it out. In fact, it's a fun conversation before you head to the theaters to watch Cocktail 2, which you should. Great reviews coming in. Kriti, Rashmika and of course Shahid से हमने क्या बात की है? You'll get to see on our Instagram page. फिलहाल coming up. मैंने शाम को भी कहा था जो फी फ्राइडे नाइट की है ना वो सैटरडे नाइट की नहीं होती है. सो एंजॉय द फ्राइडे नाइट विद सम फैंटास्टिक म्यूजिक राइट हियर ऑन द बिग थ्रिल मानसी बिग 106.2.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड द बिग जेल ब्रॉट टू यू बाय
1: इंश्योरेंस मार्केट डॉट ए ई।
0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big 106.2, the beat of Bollywood.
1: मैं खोया तो ढूंढ रहा हो, चुपके से एक ख्वाब में जाइयो, होड़ो